सुप्रभात। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने

0: रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे भिंडी की खेती विषय पर। जानकारी दे रहे हैं अनिमेश।

किसान भाई बहनों को जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें होंगी एक ऐसी सब्जी की जो हर रसोई की शान है और आप सभी किसान भाई बहनों की जेब भी भरती है। वह फसल है भिंडी। ये साल भर बिकती है, जल्द तैयार होती है और 45 दिन में कमाई भी शुरू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं भिंडी की सफल खेती के वो 5 मूल मंत्र क्या है जिसे बेचकर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। पहला है जमीन और समय। गर्म धरती भिंडी की बस्ती। भिंडी को गर्म मौसम चाहिए। झारखंड में बुआई के 3 समय हैं: जायद, खरीफ और रबी। जायद में फरवरी मार्च का महीना सबसे ज्यादा मुनाफा देता है, खरीफ में जून जुलाई का महीना जो कि बरसात वाली होती है ज्यादा मुनाफा देता है, और रबी में सितंबर अक्टूबर का महीना जो सर्दी वाला महीना होता है वो भी ज्यादा कमाई देकर जाता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो जमीन बलुआ दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। पानी भरने वाली मिट्टी में भिंडी सड़ जाती है, इसलिए पानी भरने वाली मिट्टी नहीं चाहिए। खेत को 2 से 3 बार जोतकर भुरभुरा कर देना चाहिए। किस्म और बीज क्या क्या होनी चाहिए अब इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि बीज सही तो भिंडी सही। 1 एकड़ के लिए 8 से 10 किलो बीज अच्छी किस्में आर्का अनामिका, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, VRO6 ये बहुत महत्वपूर्ण किस्में मानी जाती हैं और ये पीला मोजेक वायरस से आसानी से लड़ जाती हैं। बोने से पहले बीज को 12 घंटे पानी में जरूर भिगो देना चाहिए, फिर छाया में सुखा देना चाहिए। अंकुरण 100% होता है और 4 से 5 दिन में जल्दी ये निकलने लग जाती है। बुआई और दूरी क्या होनी चाहिए? कहते हैं कि हवा खेलेगी तो भिंडी झूमेगी। लाइन से इसकी बुआई करनी चाहिए, लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर, पौधा से पौधा 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर इसको बोना चाहिए और हर जगह 2 से 2 बीज जरूर डालना चाहिए, बाद में कमजोर वाला निकाल देना चाहिए। चौथा है खाद पानी। कहते हैं थोड़ा दो, बार बार दो। बुआई के समय 1 एकड़ में 40 किलो DAP, 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास डालना चाहिए। बाकी यूरिया 20 किलो डालना चाहिए पहली तुड़ाई के बाद और हर बार थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। गर्मी में 6 से 7 दिनों पर और बरसात में जरूरत पड़ने पर डालनी चाहिए। ध्यान रहे जड़ के पास पानी ना रुके। फूल आने पर पानी की कमी मत होने दीजिए, नहीं तो फूल जो है वो झड़ जाएंगे। पांचवा है कीट रोग और तुड़ाई। कहते हैं समय पर तोड़ो और दाम अच्छा पाओ। पीला मोजेक वायरस भिंडी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पत्ते पीले हरे और चित्तीदार हो जाते हैं। इलाज क्या है? तो सफेद मक्खी को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए एमीडा क्लोप्रीड 0.5 ml प्रति लीटर पानी में छिड़क देना होगा और 15 दिन के अंतराल पर हर बार छिड़कना होगा। तेला और फल छेदक कीट भी लगते हैं इसमें। नीम का काढ़ा या क्विनलोकॉस दवा काम इसमें आती है और बोने के 40 से 45 दिन बाद आप भिंडी की तुड़ाई शुरू कर सकते हैं। भिंडी को रोज या 1 दिन छोड़कर तोड़ना चाहिए। सुबह सुबह तुड़ाई करने से ताजगी भी बनी रहती है। और आखिरी सलाह क्या है कि भिंडी की फसल 2 से 3 महीनों में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ से 40 से 60 क्विंटल तक पैदावार आप ले सकते हैं। जायद वाली भिंडी में भाव भी अच्छा मिलता है और 30 से 50 रुपए किलो भी बिक जाता है। याद रखें मित्रों, साफ खेत, सही दूरी, समय पर तुड़ाई, भिंडी देगी भरपूर कमाई। भिंडी की खेती, इसी विषय पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी कृषक मित्रों को पुनः एक बार जोहार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

आज का चिंतन। गौतम बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी ट्यून क्या है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ।

जमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्य

0: सदैति।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर के स्वर में ये गणेश वंदना।

सकता हूँ। अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और साथियों को। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना की अगली रचना लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में।

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के गाय इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख ले तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आइए सुनवाते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अब आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत और 7:35 पर कार्यक्रम सुरांजलि की प्रस्तुति होगी। 7:50 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और यहीं से आप सुन सकते हैं 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण समय होगा सुबह के 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 9:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज हमारे श्रोता सुनेंगे एक ही फिल्म से गाने। सुबह 9:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण की प्रस्तुति होगी आकाशवाणी दिल्ली से। 10:20 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 हमारे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर सुनवाया जाएगा और दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे भावगीत। 12:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार। अपराह्न के 3:00 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 3:45 का समय होगा लोकगीतों का। संध्या 4:00 एवं 5:00 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं नाटक। संध्या 5:02 का समय होता है युवा साथियों का। आप सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। संध्या 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:10 पर आप सुनते हैं झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम। 6:30 पर आज आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत बनाम नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या की प्रस्तुति होगी और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे न्यूज एट नाइट। 9:15 पर स्पॉटलाइट प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:00 स्वर्ण रेखा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और 10:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत में गजलें। ये गजल सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: قتل صفائی کی اس غزل کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سگم سنگیت کا یہ سفر اب یہیں پورا ہوتا ہے۔ ہم آکاش وانی کے جمشید پور کیندر سے بول رہے ہیں ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر۔
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे मिथिलेश मिश्रा का गाया मैथिली गीत।

मिथिलेश मिश्रा और साथियों के गाय मैथिली गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं सूर्यांजलि। कार्यक्रम सूर्यांजलि में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे रोशनी बंदोपाध्याय का गाया रविंद्र संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रोशनी बंदोपाध्याय का गाया रविंद्र संगीत, और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, प्रोस्टेट कैंसर जांच और सलाह। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय जौहरी, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के कल के अंक में हमने जाना था प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना और कैंसर के संबंध के बारे में। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम जानेंगे कि अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो उसे किस तरह की जांच करानी चाहिए और उसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी चाहिए। इस बारे में बताने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जौहरी। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी को लक्षण नजर आए या अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे और कौन कौन सी जांच करानी चाहिए?
1: वैसे केस में एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और उसमें अगर वो बढ़ा हुआ आया, अल्ट्रासाउंड का सजेस्टिव है कि ग्लैंड बड़ा है, फ्लो टीज ठीक नहीं है, तो फिर हम प्रोस्टेट की एक बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी एकदम मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, छोटे से नीडल से की जाती है। अगर प्रोस्टेट कैंसर आता है तब फिर उसका इवैल्यूएशन होता है कि वो किस स्टेज में है। अगर लोकलाइज्ड है देन उसका ट्रीटमेंट अलग है, अगर वो लोकली एडवांस है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, और अगर वो पूरा एडवांस है मतलब मेटास्टेटिक यानी कि वो बॉडी में डिफरेंट भाग में पहुंच गया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर हम लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी। इसको ओपन सर्जरी भी है, इसका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी है और आजकल रोबोटिक सर्जरी भी है। लोकली एडवांस या फिर मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर का सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, रेडियोथेरापी है या फिर एडवांस का कीमो हार्मोनल या कीमोथेरापी है। अगर PSA और एनलार्ज ज़्यादा नहीं है और बायोप्सी में प्रोस्टेट कैंसर नहीं आया है बट पेशेंट को सिम्टम्स प्रोस्टेट का बहुत ज़्यादा है या पेशाब रुक जा रहा है, वैसे केस में दवाई से अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो बहुत ही सिंपल सर्जरी आजकल अवेलेबल है जिसे TURP बोलते हैं, ट्रांस यूरेथल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें पूरा प्रोस्टेट नहीं निकाला जाता है, इसमें जो प्रोस्टेट जो यूरेथ्रा को पेशाब की नली को जो दबा दिया है उस दबे हुए सेगमेंट को अंदर से ही रिलीज किया जाता है जिससे उसका फ्लो रुकता बढ़ जाता है, पेशाब रुकता नहीं है। ये नॉन कैंसरस प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का सर्जरी है TURP, बट कैंसरस प्रोस्टेट का सिम्टम सर्जरी है रेडिकल प्रोस्टेट।
0: अक्सर जैसा कि होता है कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो प्रोस्टेट कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं?
1: देखिए, एक जो सबसे अच्छी बात है प्रोस्टेट कैंसर में कि प्रोस्टेट कैंसर एक वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोस्टेट कैंसर है, मतलब कई बार मरीज उन्हें पता ही नहीं चलता है और वो अपना पूरा जीवन काल जी लेते हैं, मतलब वो समय से पहले उसको डेथ नहीं होता है क्योंकि उस डिजीज ही इतना स्लो ग्रोइंग है कि वो अपना जीवन पूरा जी गया। एक स्टडी हुई थी आज से कई साल पहले, उसमें डेथ पेशेंट का पोस्टमार्टम के दौरान जो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है उसका रिसर्च बायोप्सी किया गया, तो 80 के बाद वाले मरे जो मरीज थे लोग थे अपने उम्र से जो मरे 80 ईयर प्लस, उसमें कम से कम 70-80% पेशेंट में पाया गया कि उनको लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर था। तो यानी कि वो व्यक्ति प्रोस्टेट कैंसर से नहीं मरा था, वो अपनी उम्र से मरा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो तो लकी थे क्योंकि उनका 80 ईयर वो जी गए, बट सब लोग इतने लकी नहीं है और हर प्रोस्टेट कैंसर इतना लो ग्रेड भी नहीं होता है, कुछ प्रोस्टेट कैंसर बहुत फास्ट ग्रोइंग भी होता है। तो एडवाइस सबसे पहला यही है 45 के आसपास आप अपना एक जनरल रूटीन यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन जरूर कराइए। अगर आपको प्रोस्टेट का सिम्टम है, आपको शुरुआती स्टेज में बता दिया गया है, तो आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आपके पिताजी, आपके दादा या आपके बड़े भाई को प्रोस्टेट कैंसर रहा है तो आपको ज्यादा रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर होने का, आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि प्रोस्टेट कैंसर है तो खतरनाक लेकिन इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय पर अपना इलाज करवाएंगे और जो भी लक्षण डॉक्टर साहब ने बताया उस लक्षण को आप अगर थोड़ा सा भी अनुभव करते हैं तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि आपका समय पर इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उम्मीद है हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, प्रोस्टेट कैंसर जांच और सलाह। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजय जौहरी। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
6: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की, संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
11: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
12: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
11: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुँच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
13: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
11: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
14: NTA is committed.
15: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
14: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
9: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
9: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में तीन मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats.
16: Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
10: This meeting also holds significance as India had emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
16: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshav Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
17: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
16: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
11: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagra style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashwani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
18: Mera naam Pankaj Jaria hai.
19: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
11: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath Corridor is providing

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन को लेकर की बैठक, कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर दिया जोर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में कहा, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सोच, नवाचार और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अंगदान से लोगों को मिलेगा नया जीवन, सरकार के साथ स्वास्थ्य संस्थानों और सामाजिक संगठनों को मिलकर करना होगा काम। झारखंड में कमजोर पड़ा मॉनसून, बारिश की कमी के कारण तापमान में हो रही वृद्धि, गर्मी और उमस बढ़ी। और रांची में आज से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल और राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का होगा आगाज। थ्रोबॉल प्रतियोगिता में 5 देशों के 150 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल।

0: और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री चौहान ने चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची लोक भवन में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के तहत आईआईटी इंदौर से आए विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है और ऐसे कार्यक्रम युवाओं को देश की सांस्कृतिक समृद्धि को निकट से जानने का अवसर प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सोच, नवाचार और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि अंगदान कई लोगों के जीवन की नई शुरुआत बन सकता है और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है तथा इसके लिए सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा।
2: युवा ट्रांसप्लान से लेके किडनी ट्रांसप्लांट तक आप प्रमोट करते हैं। अब इस तरीके के कई बदलाव, कई सारी चीजें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ते जा रहे हैं, उन्हीं के बीच का ये ऑर्गन डोनेशन का भी एक विषय है। ये जरूर है कि इसकी अवेयरनेस, इसका आवश्यकता, इसकी कैसे इन सब चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं।
0: केंद्र सरकार के 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत रांची जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायतों, जेलों तथा शहरी क्षेत्रों में अब तक 3,100 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जाँच और उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। इस बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन देने के लिए भाजपा पर निशाना साधा है।
5: भारतीय जनता पार्टी की सोच ये रही कि नाथवानी को सपोर्ट करके यदि हम नाथवानी को चुनाव जिता देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत मानी जाएगी, अगर नाथवानी हार जाते हैं तो वह हार नाथवानी जी की झोली में जाएगी, तो ये सोच उनका ध्वस्त होने वाला है, हो चुका है।
0: झारखंड में 12 जून को दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के बाद भी बारिश सामान्य से काफी कम है, जिससे राज्य में उमस और गर्मी बढ़ गई है और किसान चिंतित हैं। बारिश की कमी के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका असर रांची सहित अधिकांश हिस्सों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 19 और 20 जून को राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में गरज और बारिश तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची आज से दो बड़े खेल आयोजनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर चमकने के लिए तैयार है। खेल गांव में आज से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल और नेशनल स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू हो रही है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारी संवाददाता।
6: राजधानी रांची स्थित खेल गांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आज से दो दिवसीय द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का रोमांचक आगाज हो रहा है। थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लगभग 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड के अमरदीप पुरुष टीम में शामिल हैं, जबकि राज्य की अरुणा यादव भारतीय महिला टीम की कमान संभाल रही हैं। इसके साथ रांची आज से एक और बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है। खेल गांव के रोलर स्केटिंग स्टेडियम में 5 दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी आज से शुरू हो रही है। 21 जून तक चलने वाली इस राष्ट्रीय स्पर्धा में देश भर से 1000 से अधिक स्केटर्स विभिन्न आयु वर्गों में क्वाड और इनलाइन रेस में अपना दम दिखाएंगे। मेजबान झारखंड के भी 127 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण विश्व चैंपियन स्केटर अनीश राज और के शर्मा की मौजूदगी रहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नाथवानी के लिए एनडीए के विधायक होटल में। दैनिक जागरण ने रांची में आयोजित कृषि एवं व्यापार मेले की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने हजारीबाग में कोयला साइट पर तोड़फोड़ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने नीट पुनर्परीक्षा को लेकर टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन को लेकर की बैठक। कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर दिया जोर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में कहा, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सोच, नवाचार और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अंगदान से लोगों को मिलेगा नया जीवन। सरकार के साथ स्वास्थ्य संस्थानों और सामाजिक संगठनों को मिलकर करना होगा काम। झारखंड में कमजोर पड़ा मॉनसून, बारिश की कमी के कारण तापमान में हो रही वृद्धि, गर्मी और उमस बढ़ी। और रांची में आज से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल और राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का होगा आगाज। थ्रोबॉल प्रतियोगिता में 5 देशों के 150 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम,
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग सम्मान और सांस्कृतिक जलवा, डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे, डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

दोस्तों, प्यार एक एहसास है जो हर धड़कन को एक नई जुबान दे देता है। जब कोई खास हमारी पूरी दुनिया बन जाता है तो लबों पर बस एक ही तराना मचल उठता है।

उम्मीद आपने सुना इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को रचा था शकील बदायनी ने, संगीत निर्देशन था रवि का।

0: आनंद बख्शी रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मी कांत प्यारे लाल ने, आवाज़ लता मंगेशकर की थी और ये गीत आपने सुना फिल्म आसरा से। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी

0: शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन ने तीर्थयात्रा से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये यात्रा जुलाई में शुरू होगी। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस साल का विषय है चरागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत आज से झारखंड की राजधानी रांची में हो रही है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं सुरंजना लेकर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो।

0: آپ کی فرمائش۔ ہر منگلوار رات 10 بجے سے 11 بجے تک ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر۔ اور ہاں، اپنی فرمائش ریکارڈ کروانے کے لیے ہمیں کال کریں ہر بدھوار دوپہر 12:30 بجے سے 1 بجے کے بیچ۔ ہمارا فون نمبر ہے 0657-296-0445۔ ہلو، آپ کی فرمائش، سنگیت وہی جو آپ چاہیں۔
1: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
0: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
5: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर। श्रोताओं, गीतों के इस सुनहरी दुनिया में हम आपको लिए चलते हैं जहां प्यार की गहराई है, रिश्तों की अहमियत है और अपनी मिट्टी से जुड़ाव है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की उस कालजयी फिल्म की जिसने हर दिल को छू लिया था।

कार्यक्रम सुरंजनामी श्रोताओं, आपने सुना फिल्म विरासत के गाने। आवाजें थी कुमार सानू, के एस चित्रा, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, जसपिंदर नरूला और साथियों की। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत निर्देशन था अनु मल्लिक का।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुनेंगे कल्याणी विलावल राग पर आधारित सितार वादन पंडित देवू चौधरी से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित देबू चौधरी से सितार वादन राग था कल्याणी विलावल। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित देवू चौधरी से सितार वादन। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली

0: की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said

0: पहले सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। G7 देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की। इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया का किया आह्वान। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड की वैश्विक कीमतें 5.4% गिरकर लगभग $79 प्रति बैरल हो गई हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक बनाई और अर्जेंटीना ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा सुनिए हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेयन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है, जिसमें संक्रमितों का पता लगाना, सीमा पर निगरानी और सामुदायिक सहयोग लेना शामिल है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी एक बार फिर दोहराई है। G7 देशों ने कमजोर देशों की मदद करने और मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए विकास और निवेश वित्त में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष से वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है और जान माल को नुकसान पहुंचा है। समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से लगातार आपस में जुड़ती दुनिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहल में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान, तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान न करना अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता में सबसे बड़ी बाधा है। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 तक पहुंच गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक हस्तियों, कार्यकारी अधिकारियों, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को भारत के साथ नवाचार से संचालित एक उज्ज्वल और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 3 दिन की उपलब्धियां भारत और फ्रांस की नवाचार साझेदारी की अपार क्षमता को दर्शाती हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आइसलैंड की विदेश मंत्री थोर गेरदुर कैटरिन गुन्नास डॉटर और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत और आइसलैंड के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए 16वां वर्ल्ड कप गोल किया और इतिहास रच दिया। मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने के रिकॉर्ड में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज की बराबरी की। इससे पहले आज सुबह अमरीका के बॉस्टन स्टेडियम में ग्रुप आई के अपने पहले मैच में नॉर्वे ने ईरान को 4-1 से हराया। कल रात न्यूजर्सी में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से पराजित किया। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में समय शीर्ष पर है। भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 होगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लोजर्न शहर के पास स्थित बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान शांति समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड की वैश्विक कीमतें 5.4% गिरकर लगभग $79 प्रति बैरल हो गई। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक बनाई और अर्जेंटीना ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराया। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning, this is Akashvani. I am Sarabjit Kaur with the world news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France today. G7 nations announced series of initiatives to strengthen global health, call for coordinated response for Ebola outbreak. Global prices.
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम किसी से कम नहीं। आपने सुना इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, धुन राहुल देव बर्मन का था।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क में। समीर के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म और प्यार हो गया से,

0: अलका याग्निक का गाया ये गीत आपने सुना और प्यार हो गया फिल्म से। जावेद अख्तर ने इस गीत को रचा था, संगीत निर्देशन नुसरत फतेह अली खान का था। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
6: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
7: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
6: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
7: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम।

0: के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: कार्यक्रम फिल्म संगीत में श्रोताओं एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना तमन्ना फिल्म से। आवाज़ अलका याग्निक की है, इंदिवर की रचना है और संगीत अनु मल्लिक का है।

आ अब लौट चले, सुनवाते हैं इस फिल्म का गाना उदित नारायण और जसबिंदर नरूला की आवाज़ों में। शब्दकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनवाते हैं जुबीन नौटियाल का गाया रेड टू फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं रोचक कोहली।

0: श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबक कम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन्डर लाइन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब

0: अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इसमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका और इजराइल के सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

Wood. कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार करें आपकी दोस्त नेहा का सप्रेम नमस्कार।

सपने वो सच नहीं होते जो बंद आंखों से देखा जाए, पर सपने वो सच होते हैं जो खुली आंखों से देखा जाए। जी हाँ श्रोताओं, बंद आंखों से सपने तो सभी लोग देखा करते हैं, लेकिन जो खुली आंखों से सपने देखते हैं उन्हें सच करने का जज्बा भी उन्हीं के पास होता है। वैसे खुली आंखों से सपने देखने वालों का हवाई उड़ान भरने वाला कहकर भी मजाक उड़ाया जाता है, पर हाँ मुकद्दर का सिकंदर भी वही कहलाता है जो इन सब बातों से परे हटकर अपने सपनों को आकार देने में जुट जाता है। विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो स्वस्थ इंसान के लिए बंद आंखों के सपने अच्छी नींद के द्योतक होते हैं, और अगर दैनिक जीवन की बात करें तो खुली आंखों के सपने अच्छे भविष्य के द्योतक होते हैं। छोटे बच्चे अपने निश्चल बाल सुलभ मन में ना जाने कितने सपनों का ताना बाना बुन लेते हैं, और हम बड़े समझदार लोग जो इन सपनों को उनकी बचकानी हरकत समझकर हंसकर टाल जाते हैं, कैसी अजीब बात है ना। उनके सपने पल पल हर दिन बदलते रहते हैं, इसलिए वे हर पल एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। तो याद रखिए श्रोताओं, सकारात्मक विचार बनाए रखने वाले लोग ही अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर और असफलताओं से नई सीख लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं।

शीरीन फरहाद की तो निकल पड़े। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत निर्देशन किया था जीत गांगुली ने। भारत के गौरवशाली इतिहास में जब जब वीरांगनाओं का जिक्र किया जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचना झांसी की रानी में इसी पराक्रम का जिक्र करते हुए लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आज पुण्यतिथि है। 17 जून सन 1858 को अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। हर साल इस दिन रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में उनके शौर्य की याद दिलाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने उस दौर में अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे, जब युद्ध के लिए सिर्फ पुरुषों को योग्य माना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध कौशल के साथ उनका मातृत्व धर्म भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 को उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका भी था, लेकिन घर में सब प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाते। छोटी सी उम्र में ही मां का निधन हो जाने के बाद उनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वित्य के यहाँ हुई, जहां उन्होंने घुड़सवारी, युद्ध के दांव पेच, तलवारबाजी भी सीखी। छोटी सी मनु हर कला में माहिर हो चुकी थी। किशोरावस्था में ही उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई, जिसके बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई। सन 1851 ईस्वी में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद बालक का निधन हो गया। राजा गंगाधर राव को इतना गहरा धक्का लगा कि वे फिर स्वस्थ नहीं हो पाए और वे भी रानी को अकेला छोड़कर चल बसे। महाराज का निधन और बालक की असामयिक मृत्यु ने उन्हें तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब भी उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया था। अंग्रेजों की कूटनीति समझते हुए उन्होंने एक बालक गोद ले लिया। फिर भी अंग्रेजों ने जबरन बलपूर्वक झांसी हथियानी चाही, बदले में रानी ने युद्ध मोर्चा खोल दिया। लगभग 7 दिन तक चली इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिर दिन बलपूर्वक छल पूर्वक उन पर हमला किया गया। वे घायल हो गई और आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की और घायल होकर अपने प्राण त्याग दिए।

मणिकर्णिका, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था शंकर एहसान लॉय ने और गीत लिखा था प्रसून जोशी ने।

आज हम हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता निशिकांत कामत को भी याद करेंगे श्रोताओं, जिन्होंने दृश्यम, मुंबई मेरी जान और मदारी जैसे शानदार फिल्मों का निर्देशन किया था। इनका जन्म 17 जून 1970 को दादर मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से की थी। इससे उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया। हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता फिल्म हवा आने दो से उन्होंने की थी। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की ओर अपना रुख कर लिया। इन्हें सबसे ज्यादा शोहरत 2015 में आई फिल्म दृश्यम ने दिलाई। इन सब के अलावा वे एक शानदार अभिनेता भी थे। उन्होंने हाथ आने दे, 404, एरर नॉट फाउंड, रॉकी हैंडसम, डैडी, जूली 2, भावेश जोशी, सुपर हीरो जैसे फिल्मों में भी अभिनय किया। 17 अगस्त 2020 को बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनके जाने से फिल्म जगत में एक सूनापन सा पैदा हो गया। उन्हें उनके निर्देशन में बनी कुछ शानदार फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

भावेश जोशी सुपर हीरो इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अमित त्रिवेदी की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था अमित त्रिवेदी ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोताओं, आज है अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन। इनका जन्म हुआ था 17 जून 1987 को मुंबई में। इनका पूरा नाम अमृता दीपक राव है। प्यार से परिवार के लोग इन्हें अम्मू कहते हैं। इनका नाम उनके दादा अमृत राव के नाम पर रखा गया है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी माँ का नाम कंचन राव और पिता का नाम दीपक राव है।

इश्क विश्क इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन किया था अन्नू मलिक ने। श्रोताओं, इस फिल्म के बाद अमृता ने मस्ती मैं हूं ना वाह लाइफ हो तो ऐसी और विवाह जैसे फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में हिट साबित हुईं।

0: विवाह फिल्म का ये गीत आपने सुना। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में इसके गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय टेनिस खिलाड़ी की जिन्होंने सन 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का ओलंपिक में पदक का रास्ता खोला था। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की। इनका जन्म हुआ था 17 जून सन 1973 को गोवा में। उनकी मां जेनिफर पेस 1980 में भारतीय बास्केटबॉल टीम की कप्तान थी और उनके पिता डॉक्टर वैस अगापितो पेस हॉकी के मिडफील्डर थे। लिएंडर की स्कूली शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हायर सेकेंडरी से हुई। 7 वर्ष की आयु में ही टेनिस खेलना इन्होंने शुरू कर दिया था। डबल्स में लिएंडर ने महेश भूपति के साथ खेलकर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। 1997 तक इस जोड़ी ने खेल की नई ऊंचाइयों को छुआ। 2001 का विंबलडन खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया। किसी अन्य जोड़ी ने ऐसी शानदार सफलता आज तक नहीं प्राप्त की थी। 1996 में लिएंडर पेस को उनके खेल में उत्तम प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से उन्हें पुरस्कृत किया गया। 2001 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया।

चांदनी चौक टू चाइना, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना कैलाश खेर की आवाज में। इसके गीतकार और संगीतकार थे कैलाश खेर।

श्रोताओं, कई बार चिंता और तनाव के कारण हम नकारात्मक सोच या भावनात्मक असंतुलन का सामना करते हैं। ये हमारे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन पर भी बुरा असर डालते हैं, साथ ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी। अगर आप भी इन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो कुछ तकनीकें हैं जो आपको उनसे बचाने में मदद कर सकती हैं। मनोविज्ञान ये स्पष्ट नहीं करता कि पहले भावना आती है या पहले क्रिया। अभिव्यक्ति सिद्धांत के अनुसार ये दो तरफा प्रक्रिया है, यानी पहले क्या आता है ये मायने नहीं रखता। जब आप प्रेरणा

की कमी या नकारात्मक भावनाओं का सामना कर रहे हों तो खुश रहने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से आपकी भावनाएं सकारात्मक हो सकती हैं। इस सिद्धांत का उपयोग अवसाद, चिंता या आलस्य से बाहर निकलने के लिए किया जा सकता है।

बहुत सोचने की आदत से दूरी बनाने के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है। जी हाँ श्रोताओं, बार बार एक ही नकारात्मक विचारों में फंसे रहने के बजाय अगर आप विचारों को सहमति के साथ जोड़ें तो आप नए दृष्टिकोण से सोचने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नदी या रेत के किनारे मिले एक छोटे से पत्थर को अपनी जेब या पर्स में प्रेरणा का स्रोत बनाकर रखें। जब भी आप इसे छुएं तो सोचें कि यह आपके लिए किस प्रकार प्रेरणा का संकेत है। बार बार एक ही प्रेरणादायक विचार को याद करना भी आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देने में मदद कर सकता है। नकारात्मकता, अवसाद या आत्मसम्मान की कमी जैसी स्थितियों को भी ये तकनीक सुधार सकती है।

अतीत में की गई गलतियां, असफलताओं या समय की बर्बादी के लिए मन में किसी भी प्रकार की आत्मग्लानी ना रखें। ये दृष्टिकोण पछतावे के बाहर से बाहर आने में मदद करता है। ये सोच आपको वर्तमान में छोटे से कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आत्मनिर्णय की भावना बनी रहती है। ये तकनीक उन स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होती है श्रोताओं, जहां व्यक्ति आत्मदया, असुरक्षा या पछतावे में फंसा हुआ महसूस कर रहा होता है।

इशकजादे। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना शलमाली खोलगड़े की आवाज़ में। संगीत निर्देशन किया था अमित त्रिवेदी ने और गीत लिखा था कौसर मुनीर ने।

लंदन ड्रीम्स, इस फिल्म का गीत आपने सुना जुबिन गर्ग की आवाज में। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीत निर्देशन किया था शंकर एहसान लॉय ने। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी आपकी दोस्त नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजावेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक G NH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। दिन के 12:05 हुए हैं। कार्यक्रम भावगीत के लिए करें जरा सा इंतजार।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

कार्यक्रम भावगीत में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार करें आपकी दोस्त नेहा का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, जीवन लम्हों की लड़ी है। जितने अच्छे लम्हे बिताएंगे जीवन उतना ही अच्छा बनता जाएगा। अच्छे लम्हों में शामिल है स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली और खुश दिली मिजाज, जो असल में एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि एक साधे दोनों सत है। सेहत अच्छी हो तो मन भी खुश रहेगा।

जहर फिल्म का ये गीत आपने सुना आतिफ असलम की आवाज में, संगीत निर्देशन किया था मिथुन ने और गीत लिखा था सईद कादरी ने। श्रोताओं, अच्छी सेहत का मतलब है सेहत पाने के लगातार प्रयासों से। जो जन्म से मिला वो निरोगी शरीर है, उसे निरोग बनाए रखने और निखारते रहने के लिए अच्छा भोजन, व्यायाम और अनुशासित जीवन शैली बहुत ही जरूरी है। देखा जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते इन प्रयासों में बहाने शामिल ना हों।

आतिफ असलम की आवाज में आपने सुना फिल्म कलयुग का ये गीत। गीत लिखा था सईद कादिरी ने और संगीत निर्देशन किया था मिथुन ने। श्रोताओं, हमारे दैनिक दिनचर्या में बहाने बहुत ही शामिल होते हैं। बहाने का मतलब होता है जिम वेयर मिलेगा, सही योगा मैट मिलेगी या जब धूप नर्म होगी तभी एक्सरसाइज करेंगे, जबकि सांस के व्यायाम किसी भी कुर्सी पर बैठकर किए जा सकते हैं। अच्छी दरी पर भी व्यायाम किए जा सकते हैं और धूप तो हमें रोज मिलती ही है, बस समय आपको चुनना है। यही है सही लम्हे, अच्छे लम्हे जिनका नियम से आपको पालन करना है, तभी हमारा जीवन अच्छा हो पाएगा।

उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सिद्धार्थ बसरूर और शाश्वत सचदेव की आवाजों में। गीत लिखा था कुमार ने और संगीत निर्देशन किया था शाश्वत सचदेव ने। सही दोस्त सही खिताबें इनकी तलाश भी मुश्किल नहीं है श्रोताओं। रोज एक फल खाना भी आसान है और घर का बना गर्म खाना भी। एकाग्रता के साथ अगर अच्छे लम्हों को बटोरते हुए कदम बढ़ाए जाए तो जीवन अच्छा ही होगा। प्राणायाम करने, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने या फिर धूप में टहलने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। क्या इतना भी समय हमारे पास नहीं है कि हम ये कर पाएं? आज ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत है।

0: फिल्म का नाम था रॉक ऑन, आवाजें थी रमन महादेवन और फरहान अख्तर की, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन किया था शंकर एहसान लॉय ने। और इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम भावगीत यहीं संपन्न होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लें पंडित अनंत लाल और साथी के शहनाई वादन का। राग है मुल्तानी।

आप सुन रहे थे पंडित अनंत लाल और साथियों का शहनाई वादन। राग था मुल्तानी, और आइए अब सुनते हैं इन्हीं का शहनाई पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

आप सुन रहे थे पंडित अनंत लाल और साथी का शहनाई वादन, राग था शुद्ध सारंग। और आइए अब सुनते हैं इन्हीं का शहनाई वादन, राग है भैरवी।

आप सुन रहे थे पंडित अनंत लाल और साथी का शहनाई वादन, राग था भैरवी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन का एक बजने ही वाला है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 1:10 पर होगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-US bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on key regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development. Besides his meeting with the US President Donald Trump, Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers. Later, he will participate in the WeaverTech Summit. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land, advanced indigenous technologies. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan and Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level inter-ministerial meeting in New Delhi to review stubble management measures and discuss long-term solutions to crop residue burning. During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, 3 new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सौंपेंगे प्रोत्साहन राशि। रांची और बोकारो के कर्मी भी होंगे लाभान्वित। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होगा मतदान। सत्ता पक्ष से बैजनाथ राम और प्रणव झा तथा निर्दलीय के रूप में परिमल नाथवानी हैं उम्मीदवार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की आज होगी बैठक। नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स समेत 27 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग में रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को और संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को हराकर दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देंगे। श्री मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय रांची के आयुक्त तारिक अनवर ने बताया कि इस योजना के तहत रांची और बोकारो के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपने हाल की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था। वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है। सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: इधर वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सत्ता पक्ष से झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा तथा दूसरी ओर एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
0: रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की बैठक आज कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में होगी। इसमें 27 प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसमें 4 प्रोफेशनल विभागों का नाम बदलने, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अंक पत्र और सर्टिफिकेट के प्रारूप को स्वीकृति देने समेत नए कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रांत कार्यालय के पास पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूचना पाकर आरएसएस कार्यालय पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
4: ये साधारण घटना नहीं है, हमारे यहाँ जितने अधिकारी गण है वो चपेट में आते, यहाँ पर पुलिस पिकेट बनाया जाए और जो भी है पकड़कर तुरंत ही बड़ी साजिश का पर्दाफाश करे। पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए।
0: कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के प्रगतिशील किसान सुमन लाल मेहता ने मल्टी लेयर खेती के तहत एक ही जमीन पर एक ही मौसम में एक ही पटवन से तीन अलग अलग प्रकार की सब्जियों की खेती कर अपने आय के स्रोत को बढ़ाया है। किसान ने बताया कि मध्य प्रदेश से उन्होंने मल्टी लेयर खेती की विधि सीखी है।
5: खेती का नाम है मल्टी लेयर खेती है। हमने सीख जो है मध्य प्रदेश से सीखे, ट्रेनिंग करके आने के बाद हमने इसको लगाया है। जिस फसल के लिए 100% पानी लगती है उस फसल में मात्र हम 30% या 25% पानी में ही इसमें उपजा सकते हैं। थ्री लेयर वाला भी हम कर रहे हैं, एक जमीन के नीचे है जो कंद वाली फसल है उसके ऊपर मिट्टी की जो ऊपर पत्तेदार सब्जी लगाना है। तीसरा लेयर है जो लतर वाली, हमने इसमें सिर्फ देसी बीज का ही उपयोग किया है।
0: वहीं कोडरमा के कृषि पदाधिकारी सुरेश स्वासी ने कहा कि मल्टी लेयर खेती पद्धति से दूसरे किसानों को भी अवगत कराया जाएगा।
6: पहले उनका जब फील्ड है विजिट करना होगा, फिर उसमें देखना होगा उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधा नहीं है। जो भी सुविधा नहीं है उसको प्रदान किया जाएगा। फिर जो भी आसपास किसान है उनका फील्ड विजिट कराया जाएगा जिससे कि और भी किसान प्रेरित हो सके।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 341 अंक बढ़कर 77,150 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 89 अंकों की बढ़त के साथ 24,078 पर है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,54,000 रुपए प्रति किलो है। और अब क्रिकेट। राजधानी रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 के सातवें दिन रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आर्यन हुड्डा ने नाबाद 94 और शिखर मोहन ने 62 रनों की पारी खेली, जिससे रांची ने 18 ओवर और 3 गेंदों में जीत दर्ज की। इससे पहले धनबाद डायमंड्स ने राम रोशन शरण के 58 रनों की बदौलत 191 रन बनाए थे, जबकि रांची के प्रिंस अनुराग मुर्मू ने 3 विकेट लिए। वहीं दिन के पहले मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर सत्र की पहली जीत दर्ज की, जिसमें विवेक कुमार ने 64 रन बनाए और प्रत्यूष कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सौंपेंगे प्रोत्साहन राशि। रांची और बोकारो के कर्मी भी होंगे लाभान्वित। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होगा मतदान। सत्ता पक्ष से बैजनाथ राम और प्रणव झा तथा निर्दलीय के रूप में परिमल नाथवानी हैं उम्मीदवार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की आज होगी बैठक। नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स समेत 27 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग में रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को और संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को हराकर दर्ज की जीत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 1:20 हुए हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के लिए करें जरा सा इंतजार।
8: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
9: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
10: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
11: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
12: हेलो डॉक्टर।
11: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।
7: और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना तौसीफ अख्तर की आवाज़ में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन किया था नदीम श्रवण ने।
1: जाने मन में चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: मुस्कान फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था निखिल विनय ने और गीत लिखा था समीर ने।
1: SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों ने सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वनुआतु जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

मोहब्बतें फिल्म का ये गीत आपने सुना उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भाटवाडेकर और प्रीथा मजूमदार की आवाजों में। संगीत से सजाया था इसे जतिन ललित ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।

दिल तो पागल है, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था इसे उत्तम सिंह ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

आरजू फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन किया था अन्नू मलिक ने। इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक फिवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

0: और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
5: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच

0: उसका साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
5: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।

क्रिमिनल, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और क्षमा करें श्रोताओं कुमार सानू की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था MM कीरावानी ने और गीत लिखा था इंदिवर ने।

मन इस फिल्म का गीत आपने सुना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। संगीत से सजाया था संजीव दर्शन ने और गीत लिखा था समीर ने।

वीर सारा, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था मदन मोहन ने और गीत शब्द रचना की थी जावेद अख्तर ने।

0: तुम बिन इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था निखिल विनय ने और गीत लिखा था फैज अनवर ने। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 2:55 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने एसआईटी गठन और जिहादी मानसिकता वाले आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।

0: मैं सरकार से और मैंने तुरंत अभी डीजीपी से बात की है कि अविलंब एसआईटी गठन करके अविलंब जिहादी मानसिकता के जो अभियुक्त है उनको अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी तरह की किसी भी सामाजिक संगठन दोबारा किसी की हिम्मत न हो इस तरह का हमला।
1: वही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी और रांची डीसी से बात कर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है।
2: आरएसएस के ऑफिस पर हमला करना इस प्रकार से पेट्रोल बम से गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए।
1: इधर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने घटनास्थल का मुआयना कर बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई है।
3: इस केस में हम लोगों ने काफी गंभीरता से लिया है इस केस को और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे।
1: राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। क्रॉस वोटिंग और तकनीकी गलतियों को रोकने के लिए आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधायकों को मतदान प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि हर वोट सुरक्षित रहे। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। राजधानी रांची में गड़बड़ी रोकने के लिए स्पेशल ब्रांच ने निगरानी बढ़ा दी है। विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास जैसे संवेदनशील स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जो पल पल की रिपोर्ट मुख्यालय भेज रहे हैं। रांची में 27 जून को राज्य स्तरीय डिजिटल क्रिएटर्स मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से मतदाता जागरूकता बढ़ाना है। इस मीट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो क्रिएटर्स हिस्सा लेंगे। इच्छुक प्रतिभागी 25 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ के उरीमारी में अबुआ संताल समाज भारत देशों का दूसरा स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में एक दर्जन राज्यों के सैकड़ों आदिवासियों ने शिरकत की। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कू और सचिव दसई किस्कू ने समाज को एकजुट होकर अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया।
4: आज का दिन हर्षोल्लास के साथ हम लोग का संस्कृति, हम लोग का सभ्यता, हम लोग का रीति रिवाजें और समाज के जो कल्चर है उसको बचाने के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए, उसी को और मजबूती के साथ में हम लोग बनाने के लिए हम लोग संकल्प आज हम लोग दूसरा स्थापना दिवस में हम लोग मनाने के लिए पहुंचे हैं।
1: जमशेदपुर के CSIR NML में 3 दिवसीय राष्ट्रीय छात्र संगोष्ठी बिहाइंड द टीचर्स डेस्क का शुभारंभ हुआ। टाटा स्टील और NIT के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने किया। संगोष्ठी में देश के 40 संस्थानों से आए 150 से अधिक छात्र धातु कर्म और सामग्री विज्ञान पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। पाकुड़ की हिरणपुर पुलिस ने घाघ रजनी गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। SDPO कुमार गौरव के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 1 किलो 600 ग्राम गांजा और 25 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राज्य की पारंपरिक नचनी नृत्यांगना बुटनी देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने रांची के बुंडो स्थित उनके घर जाकर उन्हें लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृतज्ञता पूर्वक सम्मानित किया। उनके साथ उनकी बहन सोमवारी देवी को भी यह संयुक्त पुरस्कार मिलेगा। श्री सेठ ने कहा कि यह झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं। अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ

0: ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। यह झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
4: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: के बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
4: अरेस्ट करो!
9: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
10: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग दी। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: Come, bind a cow, take on a monster high, Durant, hospital, Pedro!
1: उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चीख होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
2: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
3: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी,
3: हुँ?
4: सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
3: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
3: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
3: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
3: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
3: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है, और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: देवेंद्र, नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
9: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
8: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
9: अच्छा माँ।
4: माँ
9: लो देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
8: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
9: ठीक है माँ।
4: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
9: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
4: ये देखो दीदी, ये मारा।
9: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
4: अरे ये मारा।
9: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
4: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
9: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
4: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
8: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
9: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
10: हमें अंदर आने दो।
9: अरे क्यों?
11: ए लड़की रास्ते से हट जा।
9: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
10: लड़की हट।
9: माँ
10: ये चाकू देख रही है ना,
11: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
9: अरे
11: मैं बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
9: माँ
11: हट रास्ते से।
9: माँ
8: क्या देखो जल्दी ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
10: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
9: हाँ मेरी माँ को छोड़ दो।
10: ये चाकू देख रही है ना,
9: छोड़ दो।
8: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
11: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
8: अरे मेरे पास छोड़ो,
9: मेरी माँ को छोड़ो।
10: चुप चुप, आवाज से गाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप आवाज नहीं,
11: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
8: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
9: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
9: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा
9: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा
9: हेलो।
12: हाँ बेटा बोलो।
9: पापा
12: हाँ।
9: पापा
12: हाँ, बोलो बेटा।
9: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
12: कौन घुसा है?
9: माँ को बहुत मार रहे हैं।
12: अच्छा तुम घबराओ नहीं, नहीं नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
9: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा
9: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
13: बचाओ। और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
14: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
15: हाँ वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
8: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था, मैं तो डरी गई थी।
14: देखो ना सबकी जान बहादुर है मेरी
13: बच्ची। अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार, नमस्कार।

0: की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुने गजल। कलाकार हैं पंकज उधास।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंकज उधास को। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। और अब आदिवासी लोकगीतों के कार्यक्रम में आनंद लें मुंडारी लोकगीतों का। कलाकार हैं थॉमस बाजराय और साथी।
1: अभी जो आप ये गीत सुनेंगे, इस गीत में बताया जा रहा है कि फागुन माह पहुंच गया है और गांव के लोग शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। शिकार के लिए हाथों में तीर धनुष लिए हुए हैं और फागुन के बाद ही तुरंत बरसात का मौसम आने वाला है और खेतों की जुताई गुड़ाई शुरू हो चुकी है और किसान हल ढोकर खेतों की ओर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं थॉमस बाजराय व साथियों की आवाज़ में।

प्रस्तुत गीत में नीले आकाश में छाए काले काले बादल और सूर्य चंद्रमा की चमक अंधकार में लगती है। इसके साथ ही धरती की हरियाली बहुत ही मनमोहक सी दिखाई पड़ती है। ये सभी सौंदर्य हे ईश्वर तेरी ही सृष्टि का बखान करते हैं। इस धरती के सभी जीव जंतुओं को और समुद्र के सभी जीव जंतुओं को आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हे ईश्वर तूने जाड़ा गर्मी बरसात अलग अलग मौसम बनाया है। तुम कहाँ हो? क्या तुम आसमान में हो या धरती में हो? हम तेरे मार्ग पर चलते हुए तुम्हें प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम।

श्रोताओं, प्रस्तुत गीत में छोटा नागपुर के लोग जो कि पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, वे कहते हैं कि हम मुंडा आदिवासी लोग एक साथ पहाड़ों जंगलों में रहते हैं और साथ ही खेतों खलिहानों में एक साथ काम करते हैं और इसके बाद शाम को अखाड़े में बाजा बजाते हैं, नाचते गाते हैं और आनंद मनाते हैं। तो आइए सुनते हैं थॉमस बाजरा व साथियों की आवाज में ये मुंडारी लोग।

आप सुन रहे थे मुंडारी लोकगीत, कलाकार थे थॉमस बाजराय और साथी। इसी के साथ आदिवासी लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। संध्या के 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य की पारंपरिक कला और उत्पादों को बड़ी वैश्विक पहचान मिली है। जीआई रजिस्ट्री ने राज्य के कुचाई सिल्क, डोकरा क्राफ्ट और जादू पटुआ पेंटिंग समेत 11 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। रांची आरएसएस कार्यालय हमले पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिश कहा। इधर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई है। राज्य का पलाश ब्रांड आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धूम मचा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के 2 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार मिला है। इस सीजन में करीब 52,000 एकड़ बगानों से 50,000 मीट्रिक टन आम उत्पादन का अनुमान है। पलामू के जीएलए कॉलेज परिसर से आज सड़क सुरक्षा जागरूकता बाइक रैली को जिला परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल को देश में 21वां और झारखंड में 2रा स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में स्कूल ने 93.30 स्कोर हासिल किया। रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसका उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
2: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 4:02 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए नाटक बढ़ते कदम। लेखक हैं शिव मंगल सिंह, निर्देशक मंजुल किशोर वर्मा।

0: मातरम की ध्वनि देश के कोने कोने में गूंज उठी। सहस्रों पुरुष और महिलाएं वंदे मातरम का जय घोष करते हुए जेलों में चले गए। युवक वंदे मातरम का जप करते हुए फांसी पे चढ़े और अपने प्राण दे दिए।
1: हमारी पवित्र माटी में तुम सब बिरंगी एक पल नहीं रह सकते। धरती माँ की कसम, हम तुम्हारी यातनाएं खत्म करके रहेंगे।
2: हे माँ, कब तक ये अत्याचार तुम सहन करती रहोगी? तुम्हारे ही गोद में तुम्हारे ये लाल मौत की नींद सुलाए जा रहे हैं। बोल माँ बोल, आखिर कब तक, आखिर कब तक?
3: हो चुका, बहुत हो चुका, अब तो हद हो चुकी है। हम शांति के मार्ग पर चलना आज से ही छोड़ते हैं। साथियों, उठा लो हथियार, ये आजादी हमें छीननी होगी। आओ हमारे साथ।
4: ठहरो चेतन, ठहरो। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे इन निरीह लोगों को यातनाएं झेलनी पड़े। जरा सोचो, सोचो चेतन। तुम सबके हिंसक होने पर ये फिरंगी गांव वालों को, घर वालों को निरर्थक परेशान करेंगे। सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाओ, हम देखेंगे कितना दमन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अहिंसा का रास्ता अपनाकर इनके गोले बारूद को शांत कर सकते हो।
3: नहीं, देखा नहीं कितने निरीह लोगों को गोलियों से भून दिया गया। आखिर हमारा कसूर क्या था, हमारा कसूर क्या था? आप जैसे लोगों की इस अहिंसात्मक नीति ने अब तक हमें गुलाम रखा है।
2: अब ना जाने क्या स्थिति होगी। एक तरफ हमारे बुजुर्ग अहिंसा की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर युवाओं का जोश इतना बढ़ता जा रहा है कि अब अधिक धैर्य की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं।
1: इन्कलाब जिंदाबाद,
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: इन्कलाब जिंदाबाद,
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: इन्कलाब जिंदाबाद,
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: साथियों, हमारी भारत माता सिसक रही है। शांति के मार्ग पर चलकर अभी तक केवल अत्याचार ही सहते आ रहे हैं हम। अब पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? क्या केवल बाबू बनकर इन फिरंगियों की सेवा करते रहेंगे हम? इतने वर्षों तक इन्होंने हमें क्या दिया है? सिर्फ चिल्लत, बदहाली, यातनाएं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अपने देश को आजाद कराने में हम सब आज से ही अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करते हैं। आजादी के वीरों का साथ देंगे हम।
2: देखते ही देखते कस्बे, जिले, कमिश्नरी और प्रदेश के विद्यालय बंद होने लगे। शिक्षण संस्थाएं सूनी हो गईं। उधर महिलाओं से भी ये दशा देखी नहीं गई। कमला नेहरू की आवाज पर और अगुवाई में इलाहाबाद में महिलाओं ने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री कमला नेहरू के साथ सहमी हुई। पहले ही दिन विदेशी कपड़े की दुकानों को बंद करवाने में जुट गईं।
6: जरा आप अपने को तो देखिए। अरे आपके हाथ में ये जो चूड़ियां है ना, ये भी विदेशी हैं। अरे इन्हें क्यों पहनी है? अरे पहले अपने को देखिए फिर कहना।
0: दुकानदार की उल्हाना सुनते ही ललिता शास्त्री ने दुकान पर रखे कपड़ा नापने वाले गज को उठाकर देखते ही देखते सारी चूड़ियों को तोड़ डाला। दुकानदार सन रह गया। उसने तुरंत ही अपनी दुकान बंद कर दी और अगले ही दिन विदेशी कपड़ों से भरी दुकान को खाली कर दिया। यह खबर देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे आंदोलन जोर पकड़ता ही गया। आखिर गुलामी का जुआ कब तक ढोया जाता?
3: अंग्रेजों भारत छोड़ो,
5: अंग्रेजों भारत छोड़ो,
3: ये देश छोड़कर भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम सब गद्दार हो, व्यापार करने के नाम पर आए और हमारे देश पर कब्जा करके इस देश की सारी संपत्ति को ढोले जा रहे हो। नेताजी, हम सब आपकी अगुवाई में मर मिटने को तैयार हैं। इन दुश्मनों को खदेड़ देना है। अमर सपूतों, देश के हित में लड़ना जीत के आना है। मस्तक ऊंचा हिंद का रखना, दुश्मन मार भगाना है। अमर शहीदों के बल सबने समय समय ललकारा है, गिरकर उठकर लिए तिरंगा हिमगिरी पर फहराना है।
4: चेतन, कुछ सुना तुमने? दुर्भाग्यवश लोहिया गिरफ्तार हो गए। सीधे साधे दुबले पतले व्यक्ति को पुलिस के साथ जाते देखकर लोग आश्चर्य से देखने लगे। क्या यही क्रांतिकारी फरार राम मनोहर लोहिया है? लोहिया तीसरी बार बंदी बनाए गए। दूसरे ही दिन भारत के अखबारों में और इंग्लैंड के सभी अखबारों में लोहिया की गिरफ्तारी की सूचना छपी। ब्रिटिश हुकूमत ने राहत की सांस ली।
2: लाहौर जेल उस समय उतनी ही खौफनाक यातना के लिए प्रसिद्ध थी जितनी नाजी कैंप। सरदार भगत सिंह भी इसी जेल में बंदी थे। बाद में उन्हें फांसी दी गई। काली कोठरी, दीवारें, ना आदमी का चिन्ह, ना पढ़ने लिखने की कोई सामग्री, आवश्यकता से अधिक वजनी हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई जा रही थी। शैतान खूंखार अफसर बार बार एक ही सवाल पूछते कि साथियों के नाम बताओ। न सोने दिया जाता, न लेटने, नींद न आने देना, आंखें खुली रखना, घंटों अफसर के सामने खड़े रहना, अनिद्रा की स्थिति में 3 दिन से लेकर कभी कभी 10 दिन तक लगातार यातनाएं दी जा रही थी।
4: लोहिया की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक बार तो ऐसा आया कि अफसर नेताओं को भद्दी गालियां देने लगे। आखिर लोहिया कब तक बर्दाश्त करते? ज्यों ही अंग्रेज अफसर ने गांधी जी का नाम लिया, लोहिया जी की गगनभेदी भीषण आवाज गूंज उठी।

देश के कर्णधार गांधी, नेहरू, शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक और अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर, उधम सिंह, बिरसा मुंडा आदि अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सपूतों के बल पर अंततः वो समय आया जब अंग्रेजी हुकूमत को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा।

देश आजाद हुआ और सत्ता हम हिंदुस्तानियों के हाथों में आ गई। हमारा तिरंगा दिल्ली के लाल किले पर फहराने लगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की बागडोर संभाली और देश का शासन चलाने के लिए बहुत ही सूझबूझ से कार्य शुरू किया। देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ और लोग झूम झूम कर गा उठे।

0: हमारे देश में अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही है वो अंग्रेजी शिक्षा नीति से भिन्न जान नहीं पड़ती। हमारे देश के नौजवान अधिक से अधिक शासन प्रशासन में भागीदार बने, हमें ऐसा कदम उठाना होगा। हमारे देश की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है, कृषि उत्पादन की दिशा में भी ठोस कदम उठाने होंगे ताकि जनता में खुशहाली हो, गरीबी भुखमरी मिटे, कल कारखानों में स्वदेशी उत्पादन हो, ताकि हम आयात पर निर्भर न रहकर वस्तुओं का निर्यात कर सकें।
1: आपका कहना ठीक है, युवाओं के पठन पाठन के लिए जो कुछ व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया गया। नर नारी शिक्षित होंगे तभी जाकर गाड़ी के दो पहिए के समान जीवन रूपी नौका को पार लगाया जा सकता है। इस दिशा में भी कदम उठाना बेहतर होगा। कस्बे, नगर और ग्रामीण अंचलों में भी लड़कियों की पढ़ाई पर अधिक से अधिक धन खर्च किया जाए, स्कूल खोले जाएं, उनके लिए तकनीकी गैर तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलना नितांत आवश्यक है। यही नहीं, लोग खुशहाल और स्वस्थ रह सके इसके लिए चिकित्सकीय संस्थानों का जगह जगह होना भी अत्यंत आवश्यक है। आप जानते ही हैं हमारा ये देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। आइए हम सब मिलकर क्यों ना इसे समृद्धशाली राष्ट्र बनाएं।

0: समय अपनी गति से बढ़ता गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कर्मठ, त्यागी और सत्य अहिंसा के सच्चे पुजारी अपने विश्वास में अडिग, सीधे साधे लिबास, सरल सौम्य स्वभाव और छोटे कद के शलाका पुरुष श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालते हुए कहा,
1: मेरे छोटे से कंधों पर देश की सेवा का जो महान उत्तरदायित्व आया है उसे मैं हर तरह से पूरा करने की चेष्टा करूंगा। मैं सबसे पहले अधिक ध्यान बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने और बेकारी गरीबी को दूर करने पर दूंगा। साथ ही मैं रक्षा की तैयारी में भी किसी प्रकार की ढील आने नहीं दूंगा। देश की एकता को मजबूत बनाने के लिए हर संभव उपाय करूंगा।
2: प्रशासकीय सुधारों, समस्याओं की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रभावकारी साधन बनाने के निमित्त प्रशासकीय संगठनों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण होना भी अत्यंत आवश्यक है। लोगों को अनुशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में सहायता कर हाथ बटाएं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले वह भारतीय हैं। उन्हें चाहिए कि वे एक राष्ट्र तथा एक देश के ढांचे के भीतर ही सभी मसलों को सुलझा लें।
0: शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई समस्याएं आई और दृढ़ता से उसका समाधान किया गया। जैसे ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, देश को प्राकृतिक प्रकोपों की मार भी सहनी पड़ी। देश में वर्षा न होने से सूखा पड़ गया। अकाल की दशा में विदेशों से खाद्यान्न मंगाने पड़े। एक ओर जनता को खाद्यान्न की आपूर्ति करना पड़ रहा था, वहीं पर कुछ मिलावटखोरों ने खाद्यान्नों में मिलावट करनी शुरू कर दी। शास्त्री जी विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा,
1: मेरे प्यारे देशवासियों, ये संकट का समय है और जैसा कि आप जानते हैं कि संकट में बहादुरी से काम लेना चाहिए। घबराने से कोई काम नहीं बनता। एक ओर जहां सीमा पर हमारे वीर सैनिक शत्रुओं से मुकाबला करके देश की रक्षा कर रहे हैं, वहीं भुखमरी को दूर करने के लिए, खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाई भी पीछे नहीं है। इसलिए जय जवान जय किसान का नारा सदा गूंजता रहना चाहिए।

पग पग बढ़ते हुए आज हम आजादी की स्वर्ण जयंती वर्ष मना चुके हैं। देश की नैतिकता, गौरव, वसुधैव कुटुंबकम वाक्य और परहित सरिस धर्म निभाई की मूल भावना को लिए हुए उत्तरोत्तर शिक्षा, कृषि, यातायात, औद्योगिक क्रांति, श्वेत क्रांति, पर्यावरण संतुलित करने की दिशा में विकासशील देश होते हुए सैन्य शक्ति के क्षेत्र में भी हमने जो प्रगति की है, इतने समय में ही ये उल्लेखनीय बातें हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहना ही हम देशवासियों का लक्ष्य है और देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित

सकता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म लैला मजनू का ये गीत। गीत के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और धुन बनाई थी मदन मोहन और जयदेव ने।

शूट आउट एट लोखंडवाला। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, सुनिधि चौहान, आनंद राज आनंद और साथियों की आवाजें थी, देव कोहली के बोल थे और संगीत था आनंद राज आनंद का। फिल्म प्रश्न का गीत आइए अब सुनते हैं।

प्रश्न फिल्म का ये गीत आपने सुना उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें थी, कौसर मुनीर के बोल थे और संगीत था विशाल शेखर का।

विक्ट्री, इस फिल्म का गीत के और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना। गीत के बोल अमिताभ वर्मा के थे और संगीत था अनु मलिक का। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं साथिया फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। गिरिडीह के धनवार में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संस्थान के खुलने से स्थानीय और ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी। पलामू व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म और जानलेवा हमले के 23 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी संतोष कुमार सिंह को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खूंटी पुलिस ने चर्चित राधेश्याम साहू हत्याकांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पलामू के छतरपुर में आज डायन कुप्रथा के खिलाफ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। डालसा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर जिला जज ज्योतिशील ने डायन प्रथाओं को सभ्य समाज के लिए अभिशाप बताया। राज्य की पारंपरिक नचनी नृत्यांगना बूटन देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने रांची के बुंडो स्थित उनके घर जाकर उन्हें लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृतज्ञता पूर्वक सम्मानित किया। राज्य में मॉनसून के बावजूद जून महीने में सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा और चतरा में सूखे जैसे हालात हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कल से राज्य भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, शाम हो चुकी है, सूरज अब पहाड़ों के पीछे उतरने को है और दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सुनने का, थोड़ा खुद से मिलने का। मैं हूँ कामाक्षी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर आपका अपना युववाणी कार्यक्रम। आज के इस शाम में हम लाए हैं आपके लिए कुछ दिल को छू लेने वाली बातें, कुछ सोच और साथ में आपकी शाम को और हसीन बनाने के लिए तीन खास नगमे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे सिर्फ आपके नाम। आज की शाम का चर्चा का पहला विषय है एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे घर, हमारे खेत और हमारे जंगल से सीधा जुड़ा हुआ है, सूखा और मरुस्थलीकरण यानी ड्राउट एंड डिजर्टिफिकेशन। यह एक ऐसी चुनौती है जो हमारे दरवाजे पर हर रोज दस्तक दे रही है, मगर हम उसे कई बार नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। दोस्तों, भारत एक खेती वाला देश है, लेकिन आज इसी देश की 25% से ज़्यादा ज़मीन बंजर होने की कगार पर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की डिजर्टिफिकेशन एटलस कहती है कि 97.85 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन यानी पूरे उत्तर प्रदेश से 3 गुना बड़ा इलाका भूमि क्षरण का शिकार है। सूखा क्या कर रहा है? राजस्थान के थार से लेकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तक कुएं सूख रहे हैं। 2023 में कर्नाटक के 200 से ज़्यादा तालुके सूखाग्रस्त घोषित हुए। खेतों में दरारें हैं और किसान की आंखों में सवाल। जब बारिश नहीं होती तो पहले फसल जाती है, फिर रोज़गार, फिर गांव से पलायन। सूखा सिर्फ पानी नहीं छीनता, वो रोटी और रिश्ते भी छीन लेता है। मरुस्थलीकरण तो धीमा जहर है। जब जंगल कटते हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत बारिश में बह जाती है। हर साल भारत में एक पंजाब के बराबर उपजाऊ ज़मीन बंजर हो रही है। पंजाब, हरियाणा जैसे हरे भरे राज्य भी अब ग्राउंड वाटर क्राइसिस झेल रहे हैं। नदियाँ छोटी हो रही हैं और रेगिस्तान बड़े। इसका कारण यह है कि जलवायु बदल रही है और हमने भी पानी को इज्जत नहीं दी। हमने जंगल काट दिए, पानी का गैर जिम्मेदारी से ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग किया और यहाँ तक कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जिसने मिट्टी की ताकत छीन ली। साथियों, हमारा झारखंड यह तो जंगलों का राज्य कहलाता है। राज्य में कुल वन और वृक्ष आवरण 23,765.48 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन पलामू, गढ़वा, लातेहार हर तीसरे साल सूखा झेलते हैं। 2022 में सिर्फ पलामू में 7% से ज़्यादा धन बर्बाद हुआ। मगर अब कुछ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से झारखंड में 44.64 वर्ग किलोमीटर जंगल की बढ़ोतरी हुई है। सूखा के निवारण के लिए भी गुमला के लोगों ने पानी पंचायत बनाकर 200 चेक डैम खड़े कर दिए। खूंटी की महिलाओं ने बंजर पहाड़ी पर सब्जी उगा दी और नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना से गांव-गांव में डोभा बन रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि हम क्या करें? पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, क्योंकि एक पेड़ कई लीटर पानी ज़मीन में रोकता है। बारिश का पानी बचाएं, जैसे अपने घर की छत का पानी टंकी में और खेत का पानी डोभा में। मिट्टी से दोस्ती करें और रासायनिक खाद के बजाय गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। और सबसे महत्वपूर्ण, पानी की इज्जत करें, एक एक बूंद कीमती है। तो दोस्तों,

शाम ये प्रण लें, न सिर्फ गाने सुनेंगे, न सिर्फ बातें करेंगे, बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। इसी एहसास के साथ चलिए आज की शाम का पहला गाना सुनें।

सुन रहे थे फिल्म मर्डर थ्री का गाना तेरी झुकी नज़र, जिसे आवाज़ दी है शफकत अमानत अली ने, बोल दिए हैं सईद कादरी और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

सूखे और मिट्टी की बात के बाद अब चलिए आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ धरती सांस लेती है, जहाँ जंगल बातें करते हैं। मैं बात कर रही हूँ दलमा अभयारण्य की, हमारे झारखंड की शान और ग्रीनहाट की। दोस्तों, अभयारण्य का मतलब है वो जगह जहाँ जानवरों को अभय मिले, यानी बिना डर के जीने की जगह। और दलमा, ये नाम दलमा पहाड़ से आया है। यह जंगल 193 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जमशेदपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो क्या खास है दलमा में? दलमा को एलिफेंट सेंचुरी कहते हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा जंगली हाथी खुलेआम घूमते हैं। मई जून में जब पानी कम होता है तो ये हाथी झुंड में बंगाल उड़ीसा तक चले जाते हैं। उसे एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं। दलमा पहाड़ की चोटी 3000 फीट ऊँची है। ऊपर शिव मंदिर है और वहाँ से पूरा जमशेदपुर दिखाई देता है। दलमा में बांस के घने जंगल भी हैं। मानसून में तो पूरा हरा चादर सा ही बिछ जाता है। और दलमा वो बर्ड वॉचर्स के लिए जन्नत है। वहाँ 80 से ज़्यादा तरह की चिड़िया और बहुत से अलग अलग जानवर जैसे हिरन, तेंदुआ भी है। लेकिन दोस्तों, दलमा सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये लंग्स ऑफ द जमशेदपुर है। यही जंगल जमशेदपुर की हवा को साफ रखता है। यही पहाड़ बारिश को बुलाते हैं। जब हम दलमा बचाएंगे तभी अपना शहर बचेगा। दलमा सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, ये हमारी पहचान है। ये हमारे झारखंड का ताज है। दलमा के खुले आसमान में उड़ते उन परिंदों को देखा है आपने? ना कोई बंधन, ना कोई डर, बस उड़ान। काश हम भी ऐसे ही जी पाते। तो चलिए अब सुनते हैं आज की शाम का अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे फिल्म रॉकस्टार का गाना फिर से उड़ चला, जिसे गाया मोहित चौहान ने है। इस गाने के बोल इरशाद कामिल ने दिए हैं और इस गाने के संगीतकार एआर रहमान हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वक्त बदलता है, हमारी आदतें बदलती हैं, हमारे चैलेंजेस भी बदलते हैं, और जब सब कुछ बदल रहा हो तो एक चीज़ है जो हमें नहीं बदलनी चाहिए, खुद का ख्याल रखना। सच कहूँ तो आज की भागदौड़ में हम सबसे पहले अपनी सेहत को ही नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए अब हम इसी विषय पर बात करेंगे, इस नए दौर में अपनी सेहत का साथ कैसे निभाएं। ज़माना फास्ट है और इस फास्ट ज़माने में स्लो होना पड़ता है अपनी सेहत के लिए। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में फिट रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। हमारे दादा दादी के लिए सेहत का मतलब था शारीरिक श्रम और सात्विक भोजन। हमारे माता पिता के लिए सेहत का मतलब था अनुशासित दिनचर्या और संतुलित जीवन। पर आज हमारी पीढ़ी की कहानी अलग है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान भी की है और जटिल भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है आज के युवा में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां पिछले दशक के मुकाबले 40% बढ़ गई है। ये आंकड़ा डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए है। तो सवाल ये उठता है कि बदलते समय में सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। हम अक्सर अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं असाइनमेंट, वेब सीरीज़ या सोशल मीडिया के लिए। पर साइंस कहता है कि रोज़ 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हमारे दिमाग और शरीर दोनों के लिए ईंधन का काम करती है। दूसरा पहलू है शारीरिक सक्रियता, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। जिम जाना ज़रूरी नहीं है, मगर गतिहीन जीवन शैली ज़रूर खतरनाक है। दिन में सिर्फ 30 मिनट की तेज़ चाल या सीढ़ियों का इस्तेमाल या फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग, ये छोटे कदम हमारी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू मूव। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक स्वास्थ्य। हमारी जनरेशन शायद पहली ऐसी जनरेशन है जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात कर रही है, और ये सही है। लगातार तुलना, भविष्य की चिंता और डिजिटल ओवरलोड, ये सब हमारे मन पर असर डालते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम दिन में कुछ पल खुद के लिए निकालें, डिजिटल डिटॉक्स करें, किसी अपने से बातें करें, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो प्रोफेशनल मदद लेने में संकोच ना करें। आहार की बात करें तो हमें एक्सट्रीम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हर दिन सैलड खाना है, ना ही हर दिन जंक फूड। हमें बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, घर का बना खाना, सीजनल फल और पर्याप्त पानी। ये 3 चीज़ें अगर हमारी दिनचर्या में हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जो इनोवेशन यानी नए आइडियाज़ में विश्वास रखती है, जो दुनिया बदलने का सपना देखती है। पर यह सपना तभी पूरा होगा जब हमारा शरीर और मन हमारा साथ देंगे, क्योंकि एक स्वस्थ युवा ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो आज इस पल खुद से एक वादा कीजिए, समय बदल रहा है और हम भी अपनी सेहत के प्रति अपनी सोच बदलेंगे। छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अंत में हमारी सेहत ही हमारा सबसे बड़ा धन है। बदलती सोच के साथ आज हमारे शहर का मिजाज थोड़ा बदला बदला सा है। सुबह सुबह हल्की फुहारों ने दस्तक दी और इसी वजह से गर्मी से थोड़ी राहत है। बात करें तापमान की तो आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा है और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने की संभावना है। आइए अब रुख करते हैं कुछ समसामयिक गतिविधियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां दोनों देशों के बीच बड़े रक्षा समझौतों पर चर्चा हो रही है। आज स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान को हराकर FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीट पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की देश दुनिया की ताज़ा हलचल। उम्मीद है आप अपडेटेड फील कर रहे होंगे। और अब वक्त है आज की शाम को और खूबसूरत बनाने का। तो चलते हैं आज के कार्यक्रम के आखिरी नगमे की तरफ।

आप सुन रहे थे फिल्म बागी का गाना सब तेरा, जिसे आवाज़ दी है अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर ने। इस गाने के गीतकार संजीव चतुर्वेदी और संगीतकार अमाल मलिक हैं।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र, ये बातें, ये गाने सब पसंद आए होंगे। मैं हूँ कामाक्षी, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाइयों को मालती का नमस्कार। श्रमिक श्रोताओं, आधे घंटे के इस कल कारखाने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें हम अपनी चर्चा से। श्रोताओं, हर वर्ष 17 जून यानी आज के दिन विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी पर्यावरणीय समस्या की चुनौतियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है चारागाहों को पहचानें, उसका सम्मान करें और उसका पुनर्स्थापन करें। इस वर्ष मुख्य वैश्विक समारोह का आयोजन केन्या द्वारा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के सहयोग से किया जा रहा है। यह थीम घास के मैदानों और चारागाहों के संरक्षण पर केंद्रित है, जो जैव विविधता को बचाने, खाद्य

जगह भी प्रभावित हुए हैं। जल स्तर भी प्रभावित हुआ है और जीव विविधता को भी चुनौती आई है। अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण मरुस्थलीकरण की समस्या हो गई है। इस संकट से उबरने का एकमात्र साधन वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण ही है। अतः जहां तहां बंजर जमीन है उसे वनों में परिवर्तित करके ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा। इसलिए इसके प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: फिल्म यास्मीन का ये गीत था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थीं, शब्द रचना योगेश की थी और संगीत था बासु मनोहारी का। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये भेंट वार्ता। विषय है हेल्दी गट हैबिट्स। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं आमिया रंजन और बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार राय।
1: श्रोताओं, अक्सर हम बात करते हैं पेट की, कि पेट खराब है, पेट का पाचन तंदुरुस्त नहीं है, या उसका पेट का पाचन बहुत अच्छा है।

0: और कई बार आजकल एक बहुत ही प्रचलित टर्म हो गया है गट हेल्थ। तो गट हेल्थ की हैबिट्स, अच्छा गट रखने के लिए क्या हमारे खान पान होना चाहिए, किस तरह का हमारा आहार विहार होना चाहिए, क्या आदतें होनी चाहिए और अन्य सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख और नगर के जाने माने गैस्ट्रो चिकित्सक डॉक्टर अमिया रंजन जी। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार,
0: आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले चूंकि हम लोग, जैसा मैंने कहा कि पेट से हम लोग बात करते हैं, तो कई बार लोगों को लगता है जो पेट, जो हमारे शरीर का जो मध्य भाग है जिसको हम लोग उदर एब्डोमन बोलते हैं, वो तो बाहरी हो गया, लेकिन ये जो गट की जब हम बात करते हैं, जो उस अंदरूनी पेट की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो इस संदर्भ में हम गट से क्या अभिप्राय है?
1: गट अगर हम देखें तो गट हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारा पेट, हमारी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा गट है। तो गट हेल्थ का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव जो सिम्टम्स हैं, जैसे खट्टी दकार होना, हार्ट बर्न होना, अपच होना, पेट फूला फूला लगना,
0: अच्छा अच्छा
1: है ना, अच्छी स्टूल होना, स्टूल में ब्लड ना आना, स्टूल में कोई म्यूकस ना आना, नॉर्मल स्टूल होना और खाना पचना, ताकि किसी भी किस्म की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, ये सब जो डाइजेस्टिव हेल्थ है ये अप्रोप्रिएट होना, ये गट हेल्थ या हेल्दी गट की निशानी
0: है, सिम्टम है।
1: जी
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी आपने कहा कि पाचन तंत्र में ये जो स्टोमक है, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो इसमें फिर जो गट है, जब हम खाना खाते हैं तो अपना काम करना कब आरंभ कर देता है?
1: खाना जो पचना शुरू होता है वो तो सीधा मुंह से ही शुरू हो जाता है।
0: अच्छा।
1: जो मुंह की सलाइवा होती है, इनफैक्ट खाना प्रॉपरली चू करना, इसकी गट हेल्थ की शुरुआत तो इसी से हो जाती है।
0: अच्छा,
1: कि
0: तो
1: खाना प्रॉपरली,
0: हाँ मतलब
1: जी,
0: ये नहीं कि
1: खाना समय लेके प्रॉपरली चू किया जाए, ताकि जो माउथ के ही जो सलाइवा है उससे भी मिश्रण अच्छे तरीके से हो, उसके बाद खाने की नली में जाए, फिर वहां से पेट में खाने का मिश्रण सही से हो, ताकि वहां पे जो एसिड सिक्रीशन है उससे भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है पेट से ही।
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर वो खाना छोटी आंत में जाता है, जहां मेनली हमारा जो पित्त है जो लिवर से आता है, और जो पैंक्रियाटिक जूस है जो पैंक्रियास से आता है। तो अच्छे गट हेल्थ के लिए एक अच्छा लिवर, अच्छा पैंक्रियाटिक सिस्टम और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें गट हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे आजकल सबसे ज्यादा रिसर्च भी हो रहा है, वो है हमारा गट माइक्रोबायोम या हमारे गट की गुड बैक्टीरिया। ये जो गुड बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल,
0: मतलब आपके बोलने का मतलब है कि हमारे गट में मतलब बैक्टीरिया भी।
1: जी जी जी, हमारे गट में,
0: आपने कहा गुड, इसका मतलब बैड भी हो सकता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, बैड भी है।
0: तो
1: गुड बैक्टीरिया की प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम कुछ एंटीबायोटिक्स मिस यूज करने लगे हैं, कुछ अनजुडिशियस यूज हो एंटीबायोटिक की। जैसे नॉर्मली वायरल फीवर होती है, वायरल इलनेसेस होती हैं, नॉर्मल अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह, उनमें अनअप्रोप्रिएट, जो इनअप्रोप्रिएट यूज है एंटीबायोटिक्स का, उससे वो गुड बैक्टीरिया जो है वो खराब हो जाती है।
0: लंबा सेवन या
1: जी
0: अनावश्यक,
1: अनावश्यक बिल्कुल, जो सर्दी खांसी के लिए एजिथ्रोमाइसिन की डोज ले ली, ये सब
0: या बिना चिकित्सक के परामर्श,
1: जी
0: जी, चिकित्सा में भी लोग एंटीबायोटिक लेने लगते हैं।
1: जी सो पुअर ईटिंग हैबिट्स, एक्सेस स्क्रीन टाइम, आजकल जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के वजह से, एक एक्सेस स्क्रीन टाइम होने लगा है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल होने लगी है, एक्सरसाइज कम होने लगा है,
0: इससे जो लाइफस्टाइल मतलब लोग बैठे बैठे ज्यादा समय कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में कम लगा है,
1: उससे स्लीप कम हो रहा है स्ट्रेस के वजह से स्लीप, तो ये सब कुछ जो है हमारे गट माइक्रोबायोम को या हेल्दी गट को डिस्टर्ब करता है।
0: अच्छा, मतलब जो हमारा लाइफस्टाइल, जो जैसा मैंने
1: आरंभ
0: में कहा था कि खान पान के अलावा हमारा आहार विहार, हमारी आदतें, सबसे भी मतलब नींद से भी, तनाव से भी, सबसे
1: बिल्कुल
0: गट हेल्थ बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: तो अभी डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो एक खराब गट हेल्थ है उसका और लक्षण असर क्या, कैसे पता चलता?
1: तो ये जो खराब गट हेल्थ है उसमें अगर हम सिम्टम्स देखें, तो अगर पेट के सिम्टम्स हैं जैसे स्टमक के, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्ली सेटाइटी या जल्दी पेट भर जाना।
0: अच्छा,
1: पहले जितना खा पाते थे उससे कम खाना, पेट एकदम फूला फूला लगना, पेट तना हुआ लगना, खाने के बाद ब्लोटिंग होना, खट्टी ढकार, हार्ट बर्न होना, है ना, ये सब चीजें जो है ये पेट की हैं। उसके बाद जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में, उनमें न्यूट्रिएंट्स की

0: डेफिशिएंसी होना, कुछ लोगों को एक डिजीज होती है जिसे सिलियक डिजीज कहते हैं, ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, जैसे
1: अच्छा
0: वीट से,
1: ग्लूटेन क्या हुआ डॉक्टर साहब, मतलब एक
0: ग्लूटेन
1: पार्ट।
0: ग्लूटेन मतलब जो गेहूं में जो
1: अच्छा गेहूं,
0: तत्व होता है, जो
1: जी।
0: एंटीजन होता है, उससे रिएक्शंस होती हैं।
1: अच्छा कई बार हम
0: तो
1: लोग ने सुना है कि दूध से भी कई
0: दूध से
1: लोगों को जैसे
0: लैक्टोज
1: होता है,
0: इंटॉलरेंस,
1: लैक्टोज
0: जी
1: इंटॉलरेंस,
0: लैक्टोज
1: जी
0: इंटॉलरेंस, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लक्षण हैं जिससे पता चल सकता है कि गट हेल्दी नहीं है। लैट्रिन में खून आना, स्टूल में ब्लड आना,
1: अच्छा मल
0: ये
1: में,
0: सब,
1: या
0: हाँ
1: मल की
0: जी
1: आदतों में भी अंतर आना,
0: बिल्कुल, वो भी
1: कॉन्स्टिपेशन या
0: कॉन्स्टिपेशन,
1: जो
0: वो अगर वेट लॉस के साथ,
1: कब्ज।
0: वेट लॉस और पुअर एपेटाइट यानी भूख ना लगने की अगर समस्या हो तो उसके साथ एक बहुत अलार्मिंग सिम्टम हो जाता
1: जी मतलब उस समय तुरंत किसी
0: है। बिल्कुल
1: कुशल चिकित्सक को,
0: जी
1: विशेषज्ञ को दिखाना
0: जी
1: आवश्यक है।
0: जी जी जी
1: ये तो डॉक्टर साहब आपने खराब गट हेल्थ के लक्षण के बारे में बात की, और इससे मतलब अगर खराब गट हेल्थ अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम रहे, अगर लंबे समय तक हम अपने गट पे ध्यान नहीं दें, गट के हेल्थ पे ध्यान नहीं दें, पूरे पाचन तंत्र को अगर हम इग्नोर करें, उसकी अवहेलना करते रहें, तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
0: तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो आजकल हम देख रहे हैं, वो होता है IBS,
1: जी
0: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
1: अच्छा ये क्या हुआ डॉक्टर साहब,
0: इरिटेबल
1: IBS।
0: बाउल सिंड्रोम का मतलब होता है, एक सरल भाषा में कहा जाए तो चिड़चिड़ी आते हैं।
1: अच्छा वाह बहुत अच्छी
0: तो
1: आपने शब्दावली इसके लिए
0: जी
1: निकाली है कि मतलब
0: जी
1: चिड़चिड़ी आते हैं।
0: तो
1: जी
0: अगर खाना हेल्दी ना हो, बहुत प्रोसेस्ड फूड यूज़ करें, जैसे मैदा हो गया, या पैकेज्ड खाना यूज़ करें,
1: जी जी आजकल लोग
0: स्नैक्स,
1: जो है
0: वो
1: ज्यादा
0: अगर
1: पैकेज्ड।
0: हम इसी के जगह अगर हम मिलेट्स यूज़ करें, जैसे इनफैक्ट
1: बिल्कुल
0: होल फूड मिलेट्स, खूब
1: तो
0: सारा
1: मतलब मिलेट्स का
0: वेजिटेबल्स,
1: इस्तेमाल करना, जैसे ज्वार,
0: जी
1: बाजरा,
0: जी
1: रागी, ये
0: बिल्कुल
1: सब बहुत अच्छा है।
0: अच्छी चीज़ें हैं।
1: जी
0: प्रीबायोटिक्स, कुछ ऐसे खाने जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे
1: जी
0: कि केला हो गया, है ना,
1: अच्छा
0: हाँ, ये प्रीबायोटिक्स हैं। इससे अच्छी बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प मिलती है, जैसे कर्ड, योगर्ट, ये सब जो चीज़ें हैं,
1: दही
0: इनसे,
1: मतलब।
0: दही,
1: जी
0: जी हाँ, तो इन सब से उसमें हेल्प मिलती है। ओवर ईटिंग अवॉइड करें,
1: मतलब
0: खाना अच्छे से च्यू करें, एक्सेस खाना एक बार में ना खाएं, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना ना खा के स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रखें,
1: जी
0: थोड़ा थोड़ा खाना, कुछ अंतराल पे, कुछ इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। बच्चों में भी फोर्सफुल फीडिंग ना करें, आजकल बच्चों में भी,
1: जी जी हाँ
0: स्कूल
1: लोग
0: गोइंग
1: जो है
0: एज में भी,
1: स्कूल
0: बच्चों
1: गोइंग एज
0: में
1: में लोग
0: आजकल स्कूल ले जाना है तो कुछ फोर्सफुल
1: कुछ
0: फीडिंग कर रहे
1: फोर्सफुल,
0: हैं।
1: एक टीवी दिखाते हुए मोबाइल दिखाते हुए बच्चों के
0: बिल्कुल,
1: मुंह में
0: बच्चों
1: ठूस
0: के
1: दिया
0: मुंह,
1: जाता है
0: तो
1: तो।
0: इसके वजह से एक तो खाना च्यू भी नहीं होता, और जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो
1: जी जी
0: बिल्कुल ही अवॉइड
1: अच्छा
0: करें।
1: हाँ बहुत सही अभी आपने बात की कि हमारे कई
0: जी
1: श्रोताओं को, और हम लोग अक्सर भी ये सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो मदिरा पान है, शराब है, एक धारणा लोगों में बन गई है कि अगर लिटिल लिटिल लिया जाए मतलब, तो एक कहीं से मतलब ये मिथ है कि उससे
0: इनफैक्ट
1: फायदा होता है, लेकिन इस बारे में
0: मुझे
1: आप।
0: ऐसा लगता है कि आजकल जो सबसे प्रोमिनेंट या सबसे कॉमन लिवर डिजीज चल रही है वो अल्कोहलिक से ज्यादा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज चल रही है,
1: जी इसका
0: जिसे
1: क्या
0: नॉन
1: मतलब हुआ डॉक्टर।
0: अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज,
1: अच्छा
0: है ना, जो लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं या बहुत कम मात्रा में करते हैं, उनके भी लिवर की हालत बहुत खराब हो जा रही है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। बिकॉज सिर्फ अल्कोहल ही नहीं है, उनकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पुअर स्लीप है, खाने की हैबिट्स हैं, खाने में एक्सेस कैलोरीज हैं, ये सब के वजह से फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है लिवर में, जिसको नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज।
1: अच्छा
0: आगे
1: जो
0: चल के ये
1: मतलब
0: सिरोसिस में कन्वर्ट होता है।
1: अच्छा
0: इनफैक्ट जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उसमें बिना सिरोसिस के भी मरीजों को लिवर का कैंसर डेवलप कर सकता है, वो एक
1: तो
0: बहुत
1: बड़ी
0: बड़ा
1: मतलब
0: रिस्क फैक्टर है
1: खतरनाक
0: लिवर का,
1: स्थिति है, मतलब ऐसा
0: बहुत
1: नहीं है कि
0: खतरनाक।
1: पहले सुनने में
0: नहीं,
1: आता था कि जो बहुत अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं उनको लिवर की समस्याएं होती
0: मेरे
1: थी,
0: हिसाब से
1: जो
0: शराब की एक
1: ओबेस
0: बूंद भी
1: भी
0: लिवर के लिए
1: बिल्कुल मतलब एक
0: हेपेटोटॉक्सिक
1: कहा
0: है,
1: जाता है
0: ज्यादा
1: जो कि अगर कोई जहर है, विष है, तो
0: तो
1: एक बूंद
0: जी।
1: भी अगर
0: और
1: उसकी इस धारणा
0: उसके
1: को।
0: इसी क्रम में एक और चीज पे ध्यान देना चाहूंगा, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग्स हैं जैसे हर्बल मेडिकेशंस, कुछ जो FSSAI अप्रूव्ड जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपरली वो नहीं होती, DGCA अप्रूव्ड, वो मार्केट में जो हर्बल मेडिकेशंस हैं, ये हर्बल मेडिकेशन इंड्यूस्ड ड्रग लिवर इंजरी एक बहुत कॉमन कॉज है
1: अच्छा
0: आजकल लिवर
1: इसको
0: इंजरी
1: हम
0: का,
1: जो ओवर द काउंटर ड्रग्स भी
0: ओवर द
1: बोल सकते
0: काउंटर,
1: हैं,
0: और
1: और
0: या फिर इवन जो
1: जो
0: ये
1: हाँ जो
0: हर्बल
1: आजकल
0: पैकेजिंग
1: जो
0: के रूप में मिलती है ना,
1: हर्बल के
0: हर्बल
1: नाम पे
0: मेडिसिन,
1: आजकल जो
0: बिल्कुल,
1: बिना किसी
0: इनमें
1: विशेषज्ञ
0: इनमें
1: के
0: बहुत
1: सलाह के, हेपाटोटॉक्सिक
0: हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं और बहुत कॉमन कॉज है आजकल लिवर इंजरी का।
1: मतलब लीवर के लिए विषदायी।
0: बिल्कुल ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन हो गया लिवर खराब।
1: बताइए कि हमें आजकल खान पान के अलावा क्या हम दुकान से, दवा दुकान से भी क्या अपने मन से खरीद रहे हैं या दुकानदार के बताने पे खरीद रहे हैं, भी बड़ा एक जो गलत आदत है। बिना विशेषज्ञ के सलाह

0: के बिना चिकित्सीय परामर्श के हमें इनफैक्ट किसी भी तरह की दवा नहीं लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल जी।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने तो अभी खान पान और जो है और भी दो बड़ी अच्छी बातें बताएं कि अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक जो, और जैसा सीधा सा बात है कि गट का संबंध लीवर से, यकृत से है
1: जी।
0: तो साथ ही साथ और जो लीवर है, मतलब जिसको कलेजा कहा जाता था, यकृत दिल मैंने कलेजा का टुकड़ा भी कहा जाता था, मतलब उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर में, उसका भी दिल की तरह उसका भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस बारे में आगे डॉक्टर साहब अब हम कुछ हाइजीन, जो स्वास्थ्य का भी, खान पान की बात भी आपने की, जीवन शैली की भी बात की, तो कुछ स्वच्छता हाइजीन की भी,
1: स्वच्छता इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कभी कुछ खाएं तो एक हैंड हाइजीन के 6 स्टेप्स जरूर फॉलो करें।
0: जी, क्या है?
1: अगर आप सिंपल गूगल करेंगे तो हाथ कैसे धोना है वो एक सिंपल 6 स्टेप में एक चित्र आता है, जिसपे हाथ पहले ऊपर से धोएं, फिर नीचे से धोएं, कैसे उस 6 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन फॉलो करें, बड़ा एक सिंपल चित्र के रूप में आ जाता है। उसके बाद जैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक के टिफिन का इस्तेमाल ना करें, जो माइक्रो प्लास्टिक है वो बड़ा कार्सिनोजेनिक होता है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग ऐसी फूड्स यूज करें कि बाहर का ना खाना पड़े, कि ट्रैवलिंग के टाइम पे बराबर स्टमक अपसेट होता है, तो कुछ थेपला, खाखरा, ऐसा कुछ अपने साथ ले जाएं जो कि टिकाऊ हो। और जो बच्चे हॉस्टल या पीजीज में रह रहे हैं उनके माँ बाप भी उनको सिंपल खाना प्रिपेयर करने का, जैसे कुछ लर्न करें, वो सिंपल डिशेस बनाएं, और बार बार खाना बाहर से ऑर्डर करने की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो, स्विगी, जोमैटो, इन पे हॉस्टल के स्पेशली जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो घर से दूर रहते हैं, वो अगर सिंपल चीज़ें घर पे खुद से बनाना सीख लें या उनके पेरेंट्स एनकरेज करें तो बाहर का ऑर्डर कम होगा स्विगी, जोमैटो वगैरह का, जिसका खाना बहुत ज़्यादा,
0: मतलब जो लोग ऑनलाइन जो मंगाते हैं जो बिना देखे कि वहाँ कैसा बन रहा है, क्या स्थिति है।
1: जी,
0: तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हाइजीन के संबंध में हमें क्या ख्याल रखना है, खान पान के बारे में ख्याल क्या रखना है, और कुछ ऐसी जो है, मैंने आपने कहा कि फ्रूट्स वगैरह जो है, फल वगैरह का सेवन भी, जो इस तरह के बच्चे हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि तली भुनी चीजों पर हमारा डिपेंडेंसी कम हो। तो गट हेल्थ के बारे में डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी। अंत में हमारे श्रोताओं को संक्षेप में और आप क्या बताना चाहेंगे?
1: तो टेक होम मैसेज जैसे कहते हैं वो यही है कि हाइजीनिक खाना, जो हमने स्ट्रेस किया, हाइजीन को फॉलो करें, हैंड हाइजीन से लेके खाना मुंह में जाए तो अच्छे से चू हो, एडिक्वेटली टाइम मिले, एक बार में ज्यादा ना खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, फाइबर का इंटेक ज्यादा रखें, हाई फाइबर डाइट हो, और प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, मैदा, स्नैक्स, ये जो खाना है ये थोड़ा कम रहे। हमेशा जब भी कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स हो, जैसे बार बार उल्टी हो रही है ना, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, बुखार हो रहा है, ऐसी दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है, थकान लग रही है, पीलिया हो रहा है, ऐसी अगर कोई कंडीशन है तो फिर उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, जल्दी से जल्दी चिकित्सक को दिखाएं।
0: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर अम्या रंजन जी, आपने गट हेल्थ के बारे में, हमारे पाचन तंत्र के बारे में, लीवर की भी इस पाचन तंत्र में, गट में भूमिका के बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हेल्दी गट हैबिट्स, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अम्या रंजन जी और बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार राय।

श्रोताओं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है, जिसके लिए सरकार 3 किलोवाट तक की क्षमता पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे बिजली बिल में बचत होती है और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का स्रोत भी बनता है। साथ ही इससे सस्ती दरों पर लोन और रोजगार के अवसर शामिल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना, बिजली बिल कम करना और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इसमें 2 किलोवाट तक के लिए 60% और 2 से 3 किलोवाट के लिए 40% तक की सब्सिडी, जिससे 15,000 तक की वार्षिक बचत होगी। भारतीय नागरिक जिनके पास सोलर पैनल लगाने योग्य छत और वैध बिजली कनेक्शन हो और जिन्होंने किसी अन्य योजना से सब्सिडी न ली हो, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

आपने सुना फिल्म घर का ये गीत लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाजें थी, शब्द रचना गुलजार की थी और संगीत था आरडी बर्मन का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए मालती को अनुमति। नमस्कार।

हमारे श्रमिक श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 Summit in Avion, France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
1: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America, and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent, and Global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people, and spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
2: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. This meeting brought together G7 member countries, partner nations, and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership, with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany intergovernmental consultations scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Now all eyes are firmly set on the Prime Minister, Mr. Modi's highly anticipated bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the functioning of the National Cybercrime Helpline 1930 at a meeting in New Delhi and instructed the officials to revamp it. Mr. Shah also directed the officials to use artificial intelligence and multilingual support to facilitate ease of reporting. He directed the agencies to work closely with the states to pivot each call to its logical end and also asked to address the grievances arising out of freezing of bank accounts. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupinder Yadav today said that India has already brought about 22 million hectares of land under restoration efforts against the target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi. Speaking on the theme of this year's observance, Rangelands Recognize, Respect, Restore, Mr. Yadav said that rangelands and grasslands play an important role in biodiversity conservation, livestock-based livelihoods, regulation of the water cycle, carbon sequestration, and climate resilience. In Gujarat, 6 people, including a 9-year-old child, died in an accident between a truck and a private bus in Vadodara. 27 others were injured and shifted to SSG Hospital in Vadodara for treatment. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have expressed grief over the tragic accident on the Vadodara-Jarod route in Gujarat. In another incident, at least 6 women died while 3 others got injured after the e-rickshaw in which they were travelling collided with a tractor in Ujhani area of Badaun district of Uttar Pradesh this afternoon. Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath have expressed deep sorrow over the incident. In sports, in cricket, India have set a target of 403 runs for Afghanistan in the second ODI of the 3-match series in Lucknow. India were bowled out 402 in 49.4 overs. Both Shubman Gill and Ishan Kishan scored centuries. Gill made 154 while Kishan contributed 125. In reply, Afghanistan were 18 for no loss in 3.4 overs. That is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं वकील तांती और साथी।
4: जिया लो तेरे जोत कोरी।

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में श्रोताओं आज आप सुन रहे हैं कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं वकील तांती और साथी।
1: चल भाजा जोनहारी भाजा, चल भाजा कालोई भाजा, उगती बोहारिया चखनाटा, हमरा ती बोहारिया चखनाटा, आए बेहाई गाय।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत। कलाकार थे वकील तांती और साथी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: Having registered a comprehensive 64-run win against Pakistan in their tournament opener,

0: और मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
1: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
0: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: TLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
6: श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 9 बजे से विधानसभा में शुरू होगा मतदान, शाम में घोषित होंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के धनवार में किया बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। कहा, ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास मिलेगी विश्व स्तरीय शिक्षा। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल ने देश में 21वां स्थान और राज्य में हासिल किया 2रा स्थान। मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। राज्य में मानसून के बावजूद जून में 57% कम बारिश। गढ़वा और चतरा बने सूखे जैसे हालात में। मौसम विभाग ने कल से भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का शानदार आगाज। 5 देशों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं दम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। क्रॉस वोटिंग और तकनीकी गलतियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। वहीं NDA विधायक दल भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने वाली इस योजना से अब तक 15 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गिरिडीह के धनवार को आज नई शैक्षणिक पहचान मिली है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संस्थान के खुलने से स्थानीय और ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय शिक्षा मिल सकेगी।
8: केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में 1334 है, उसमें से एक आज राजधनवार में भी शुभारंभ हुआ है। फिर थोड़े दिन में बरकट्ठा में भी एक स्वीकृति मिली है, बरकट्ठा में भी केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ होगा।
7: रांची RSS कार्यालय हमले पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए NIA जांच की मांग की है। उन्होंने इसे राष्ट्रविरोधी ताकतों की साजिश करार दिया है।
9: RSS कार्यालय हमला किया गया, वह राष्ट्र भक्तों के आत्मा पर प्रहार करने वाला घटना है और यहाँ की शासन व्यवस्था को चुनौती देने वाला। यहाँ की राज्य की शासन व्यवस्था हेमंत सोरेन की सरकार निकम्मी सरकार है और निकम्मी सरकार से अपेक्षा करना मूर्खता है, इसलिए इसकी जांच NIA से होनी चाहिए।
7: राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल को देश में 21वां और झारखंड में दूसरा स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में स्कूल ने 93.30 स्कोर हासिल किया। विजेता के रूप में विद्यालय को राष्ट्रीय मान्यता

0: साथ 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रभारी प्रधान अध्यापिका रूपा वर्मा ने कहा, यह ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे छात्र छात्राओं और शिक्षकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है।
1: पूरे भारत में कुल 200 विद्यालयों का इस कार्यक्रम के तहत चयन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय का स्थान 21वां है। और इस उपलब्धि के लिए हम लोग साल भर से प्रयास करते आ रहे थे। विद्यालय को जो है वो भारत सरकार के द्वारा मानक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और इसके साथ ही 1 लाख की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।
0: राज्य का पलास ब्रांड आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धूम मचा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के 2 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार मिला है। सरकार के अनुसार इस सीजन में करीब 52,000 एकड़ बागानों से 50,000 मीट्रिक टन आम का उत्पादन का अनुमान है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @ न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महा उत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 405 करोड़ रुपए की सिग्नलिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 32 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इससे तकनीकी खामियां दूर होंगी और ट्रेनों का परिचालन अधिक सुरक्षित होगा। झारखंड के स्टेट ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही श्री दत्ता देश के 7 शीर्ष निर्वाचन कोर एक्सपर्ट्स में शामिल हो गए हैं। रांची में 27 जून को राज्य स्तरीय डिजिटल क्रिएटर्स मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से मतदाता जागरूकता बढ़ाना है। इस मीट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो क्रिएटर्स हिस्सा लेंगे। इच्छुक प्रतिभागी 25 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य की पारंपरिक नचनी नृत्यांगना बूटनी देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बुंडू स्थित उनके घर जाकर उन्हें लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृतज्ञता पूर्वक सम्मानित किया। उनके साथ उनकी बहन सोमवारी देवी को भी यह संयुक्त पुरस्कार मिलेगा। श्री सेठ ने कहा कि यह झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान है।
7: संगीत नाटक अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कला क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इच्छा होती कि भाई हम कला क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, पूरा जीवन दे दिया, तो भारत सरकार का ये पुरस्कार अद्भुत है।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून के आगमन के बावजूद जून महीने में सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा और चतरा में सूखे जैसे हालात हैं, जबकि डाल्टनगंज में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने कल से राज्य के पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में गरज के साथ बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसके कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसका उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर श्री किशोर ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन झारखंड के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर है।
8: बेहतर खेल का प्रदर्शन आपके माध्यम से होगा और जो खेल का उद्देश्य होता है सद्भावना, सौहार्द, मित्रता, आपसी भाईचारा, आपके इस खेल से निकले हुए परिणाम से हम और हमारा देश भारत राष्ट्रीय एकता, अखंडता, विश्वास एक दूसरे पर, ये माहौल हम हासिल कर सकें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 9 बजे से विधानसभा में शुरू होगा मतदान, शाम में घोषित होंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के धनवार में किया बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। कहा, ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास मिलेगी विश्व स्तरीय शिक्षा। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल ने देश में 21वां स्थान और राज्य में हासिल किया 2रा स्थान। मिलेगा 1,00,000 का पुरस्कार। राज्य में मॉनसून के बावजूद जून में 57% कम बारिश। गढ़वा और चतरा में बने सूखे जैसे हालात। मौसम विभाग ने कल से भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का शानदार आगाज। 5 देशों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
9: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
10: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले की खिलाड़ियों ने एक बार फिर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जापान के काकामिगाहारा में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप

0: कप हॉकी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। टीम में सिमडेगा की दो खिलाड़ियों संदीपा कुमारी और पुष्पा माझी ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। सिमडेगा में दोनों खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि
1: अंडर 18 एशिया कप जापान में आयोजित थी, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और उसमें हमारे सिमडेगा जिला की दो बेटियां पुष्पा मांझी और संदीपा कुमारी थी। दोनों ही खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये बहुत अच्छा टूर रहा। 2016 में आज से 10 साल पहले भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, उसमें भी सिमडेगा संदीपा की बड़ी बहन जो संगीता थी और सलीमा टेटे खेलने गई थी और अल्फा क्रिकेट। आज 10 साल बाद जब एशिया कप हुआ है तो फिर से भारत ने कांस्य पदक जीता।
0: सिमडेगा महाविद्यालय में मेरा युवा भारत की ओर से पौधरोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया गया। महाविद्यालय परिसर में अलग अलग प्रकार के कुल 45 पौधे लगाए गए। मेरा युवा भारत से जुड़ी रिया कुमारी ने कहा कि
2: मुख्य रूप से तो आज हमने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता, साथ ही साथ निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रकृति को संरक्षित रखें। और आज हम लोगों ने यहाँ मिल करके प्लांटेशन किया सिमडेगा महाविद्यालय सिमडेगा में। और हमारा प्लांटेशन करने का मोटिव सिर्फ प्लांटेशन करना नहीं था, हमें उसे अच्छे से रखना भी है। समय समय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रकृति को संरक्षित रखें। और आज हम लोगों ने यहाँ मिल करके प्लांटेशन किया सिमडेगा महाविद्यालय।
3: फुटबॉल as the orange clothing is very significant, they are playing the World Cup football to the men's team, and this is a big boost for the Netherlands women to get along with and out of the top of it off, and it's gone one bounce into the fence for four.
4: ये लगा आभा का चौका।
3: Well, beautifully timed. It was just pitched in, and she was on top of it. It was kind of a friendly half volley, I would say, by all means. And Shefali Verma, the player of the match in the women's 50-over World Cup, and now everyone wants her to find some form. So, India racing away inside the power play, and I'm not sure whether it's the right call to bat second from the Netherlands' point of view. Three boundaries in this over, one ball to go in the fourth. Warning balls. Oh, she tries to cut it away. And a bit of swing there. She was trying to glide it outside the off stump and missed it and went.
5: मैं स्कोर काफी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जैसा कि श्रोताओं को जानकारी होगी कि 20 ओवर के मैच में 6 ओवर पहले जो फेंके जाते हैं वो दो खिलाड़ी बाहर रहते हैं और उसके बाद 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर और उसके अलावा शेष खिलाड़ी घेरे के अंदर। इस समय 42 रन

0: और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत

0: के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ

0: सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।